अलिसा, तिमीलाई थाहा छैन है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ गफ्दै राख है।